बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको रितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन-कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सप्लाईज क्या सप्लाईज है
1: जी जी,
0: क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें,
1: जी
0: किस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है
1: जी,
0: किस चीज की उपलब्धता यहाँ पर है
1: जी,
0: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्र में कर पाएंगे।
1: जी
0: तो
1: जी,
0: उसके उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
1: जी जी जी।
0: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए
1: जी।
0: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजनाएं हैं, केंद्र शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कराएंगे।
1: जी जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते हैं?
0: देखिए अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या इस बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं हैं
1: जी।
0: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं
1: जी।
0: तो एक तो मिनरल, मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है
1: जी।
0: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुमन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है
1: जी जी,
0: ये सतर्क रहना है तो फलस्वरूप एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
1: जी जी,
0: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है तो हम जूट के थैले, वुमन बैग जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ
1: जी,
0: क्लाइस ब्रिक्स हुआ
1: जी जी जी,
0: सीमेंट उद्योग हुआ
1: जी,
0: क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक पत्थर उनकी भरपूर उपलब्धता है तो सीमेंट और पेवर्स क्लॉथ वगैरह
1: जी,
0: अगर क्लाइस ब्रिक्स की काफी संभावना इस क्षेत्र में है।
1: जी जी जी। और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
0: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है,
1: रूरल
0: सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
1: जी,
0: या उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना
1: जी।
0: हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो एक आवेदन RCT टीकमगढ़ में कर सकते हैं तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उनको सूचना देके उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है जिसके दिन अलग अलग रहते हैं, तो जो भी युवा इच्छुक हैं उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते
1: हैं। सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
0: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता
1: अच्छा,
0: है, जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है
1: जी,
0: 20 दिन का रहता है, किसी का 1 महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है, तो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है
1: जी।
0: आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी
1: सर? प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी, जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है, वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया गया है
1: जी।
0: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है
1: जी। अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजनाएं संचालित की जा रही है?
0: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजनाएं संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दूं
1: जी,
0: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
1: जी,
0: युवा उद्यमी योजना
1: जी
0: और किसान

0: पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित
1: अच्छा
0: है।
1: जी
0: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है।
1: जी।
0: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है। इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है, इसमें व्यवसाय शामिल नहीं है। और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है। इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
1: अच्छा। केंद्र सरकार की सर कौन सी
0: हाँ,
1: योजना
0: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
1: सृजन कार्यक्रम?
0: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है
1: अच्छा।
0: जी। और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है। इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
1: चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश ढाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए। ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा, कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होने चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको, यदि आप उद्यम डालते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती हैं वो सामने आती हैं। तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए। खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम विमल जी के पास ले चलते हैं, और विमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं, या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जैसे कि हम करते हैं, तो उसका ये कि है कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अब सर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
2: अपना रेडियो अपनी बातें आप हैं, इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के

0: एक पढ़ने पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं तो दूसरे पढ़ने पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पढ़नों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए, और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा
1: 92 19 20 77 49।
0: व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे वो, तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है।

0: ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
0: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं, उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा। और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी, और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा, और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र

0: विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं, उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
0: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रुपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

0: मोदी के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी है। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिएगा।
1: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटर सेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी FPO के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान

0: पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन के जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
1: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारित पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं, तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
0: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी, वाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI, वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
1: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है, तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है, तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
0: हमारा नंबर है 9425141726।
1: तो आपके रेडियो साथी मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

एपिसोड 10 दृश्य स्वच्छता स्वच्छ आंखें स्वच्छ जीवन। इस एपिसोड का उद्देश्य गांव में सफाई के महत्व को समझना है, जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है गांव में साफ सफाई, पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त गांव। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति BWSC की भूमिका, सामुदायिक निगरानी और देखरेख, कचरा और प्लास्टिक का सही प्रबंधन, सरकारी समर्थन और सामुदायिक भागीदारी। पहले और बाद में पूछे गए सवाल। सवाल नंबर 1, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर भी जरूरी है, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 3, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं?

0: नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा और मेरे साथ हैं जोश से भरपूर मेरे सहहोस्ट आरजे
1: माता दिन।
0: दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा सा खास है। हम सिर्फ उस सफाई की बात नहीं कर रहे जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि उस हवा की भी जिसे हम रोज सांस लेते हैं और उस माहौल की जो हमारी जिंदगी का सीधा प्रभावित करता है। और हाँ, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ।
1: बढ़िया, चलो सुनाओ।
0: मेरे दोस्त की मेघालय यात्रा कमाल की रही। वो एक छोटे गांव की इतनी तारीफ कर रहा था कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, मैं तो बस देखती ही रह गई। फिर मैंने खुद इंटरनेट पर खोजबीन की और सच में वो बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा था।
1: तुम तो सस्पेंस बढ़ा रही हो, अब ज्यादा घुमा फिरा कर मत बोलो। जल्दी बताओ कि आखिर ये कौन सा गांव है और यहाँ क्या खास है।
0: अच्छा सुनो, इस गांव का नाम मावलिन नोंग्स है। ये मेघालय में है और इसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ सफाई कोई मजबूरी नहीं बल्कि लोगों की आदत में शामिल है। ये गांव पूरी तरह प्लास्टिक फ्री है, मतलब यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अगर कहीं से प्लास्टिक आ भी जाए तो उसे फेंका नहीं जाता। लोग प्लास्टिक की पुरानी बोतल या टायर से गमला बनाकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। गांव की गलियों में आपको बांस से बने डस्टबिन दिखेंगे। यहाँ स्थानीय चीजों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इस गांव की सबसे मजेदार बात है कि यहाँ सभी आदमी और बच्चे रोज अपने आसपास की सफाई करते हैं। टीसल की झाड़ू से बच्चे सड़कें साफ करते हैं। ये झाड़ू पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हैं। इस प्रकार सफाई का काम सब मिलकर करते हैं। गांव के घर और बाकी इमारतें भी खास हैं। ज्यादातर बांस और पत्थर से बने हैं। इससे गांव खूबसूरत लगते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ सभी घरों में शौचालय है, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। मावलिन नोंग्स ने साबित कर दिया है कि जब लोग साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं तो दूर दराज के गांव भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन जाता है।
1: लगता है

0: तुम इस गांव की बात करना छोड़ नहीं पा रहे हो और मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। गांव की दिलचस्प बातें सुनकर मुझे भी वहां जाने का मन कर रहा है। जो कुछ भी तुमने बताया वो असल में उसी साफ सफाई की बात है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और यही तो आज के लिए एपिसोड का मुद्दा भी है।
1: दोस्तों, दिखने वाली सफाई का मतलब केवल अपने घरों को साफ रखना नहीं है, बल्कि पूरे गांव को साफ रखना है। जैसे बाजार, बस स्टॉप, गलियां, स्कूल, हेल्थ सेंटर, तालाब, कुआं, ये सब कूड़े कचरे और गंदे पानी से दूर रहें और अच्छी हालत में रखे जाएं।
0: बिल्कुल, गंदगी भरा माहौल सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता बल्कि ये मक्खियों और मच्छरों को बुलाकर बीमारियां फैलाता है। गंदगी हमारे पानी को गंदा करता है, वह हवा को खराब करता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और खाने की सफाई को भी प्रभावित करता है।
1: सोचिए, क्या आपको ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर अच्छा लगेगा जिसके चारों ओर प्लास्टिक और कचरा फैला हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो जगह साफ सुथरी और हरी भरी हो तो वहाँ बैठना सुकून भरा लगेगा। साफ माहौल सिर्फ अच्छा दिखता ही नहीं बल्कि ये हमारे सेहत, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बेहतर होता है।
0: सोचिए, अगर गांव के मंदिर, मस्जिद, चर्च या पंचायत घर के आसपास कचरे का ढेर लगा हो तो क्या वहाँ जाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण के तहत सरकार गांव को ODF प्लस लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका मतलब है सिर्फ खुले में शौच रोकना नहीं बल्कि कचरे का सही प्रबंधन, गंदे पानी को साफ करना और पूरे गांव को स्वच्छ बनाए रखना भी है।
1: और हाँ, ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए गांव को सभी घरों में शौचालय का सही उपयोग सुनिश्चित करना होगा। साथ ही कम से कम 80% घरों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना सिर्फ उनके आसपास का इलाका बल्कि सभी सार्वजनिक जगह जैसे स्कूल, सामुदायिक केंद्र और तालाबों के आसपास कूड़ा या गंदा पानी जमा ना हो। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ODF प्लस IEC मैनुअल के अनुसार
0: हर गांव की सफाई और प्रगति को जानने के लिए एक रेटिंग सिस्टम है जो बताता है कि गांव में कितना सुधार हुआ है। ये स्टार टियर प्रणाली के जरिए होता है। सबसे पहले आकांक्षी गांव की बात करते हैं। ये ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांव है जो कचरे या गंदे पानी के प्रबंधन की शुरुआत कर चुके हैं। फिर आते हैं उभरते गांव जहां ठोस और तरल दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है, और आखिर में आदर्श गांव वे हैं जो ODF प्लस के सभी नियमों को पूरा करते हैं। यहां नियमित सफाई होती है और गांव वाले सफाई और जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहते हैं।
1: वैसे ODF प्लस मॉडल गांव बनाना मुश्किल काम नहीं है, बस छोटे छोटे उचित कदम उठाने की जरूरत है। पहला कदम सभी घरों में शौचालय का इस्तेमाल करना है ताकि कोई भी खुले में शौच ना करे। मतलब साफ सफाई ऐसी हो जो आंखों से दिखे, यानी घरों, स्कूलों या सड़कों पर कूड़ा या गंदा पानी नजर ना आए। गांव में सभी घरों से कचरा इकट्ठा होना चाहिए। जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है। नहीं गलने वाले कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। गंदे पानी को साफ करना जरूरी है, इसके लिए नालियां ठीक करनी होंगी, पानी सोखने वाले गड्ढे बनाने होंगे और साफ किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल करना होगा। साथ ही लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक भी करना होगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि सफाई सिर्फ सरकार का काम नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। जब गांव वाले मिलकर काम करते हैं तो उनका गांव ODF प्लस मॉडल बनकर पूरे देश के लिए अच्छा उदाहरण बनता है।
0: गांव में सफाई और पानी से जुड़ी अच्छी आदतें लगातार बनी रहें, इसलिए मजबूत ग्राम जल

0: और स्वच्छता समिति या VWSC का होना बहुत जरूरी है।
1: गांव में VWSC यानी ग्राम जल और स्वच्छता समिति बहुत जरूरी है। ये कोई बाहर की नहीं, आपके गांव की समिति है। इसमें आपके गांव के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि सफाई और बदलाव लाने की जिम्मेदारी और ताकत आपके गांव में है। VWSC समिति का काम गांव को साफ सुथरा बनाए रखना है। इसमें हर घर की भूमिका होती है। जब इस समिति के साथ मिलकर सभी लोग काम करते हैं तो एक साफ और सेहतमंद गांव बनना आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि VWSC में कौन कौन लोग होते हैं। इस समिति के 5 सदस्य महिला प्रतिनिधि, आशा बहन और यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी होते हैं।
1: हाँ, और आप जानते हैं कि आपके गांव को साफ और सेहतमंद बनाए रखने में VWSC का अहम रोल होता है। मैं आपको इस समिति के काम के बारे में बताती हूँ। ये समिति गांव के लोगों को सफाई से जोड़ने की योजना बनाकर इसे हकीकत में बदलती है। साथ ही समिति ये ध्यान रखती है कि गांव में सफाई से जुड़े काम जिले की बड़ी योजना से मेल खाएं और गांव को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करें। VWSC सफाई के लिए मिलने वाले फंड को सही तरीके से खर्च करती है। पैसे का उपयोग खाद बनाने के गड्ढे, पानी सोखने वाले गड्ढे और कचरा निपटाने के आसान तरीके तैयार करने में किया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। VWSC सिर्फ सफाई से जुड़ा ढांचा बनाने का काम नहीं करती बल्कि पूरे गांव को जागरूक भी करती है। ये समिति खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को सफाई और कचरा प्रबंधन की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में सबको बुलाया जाता है ताकि हर कोई ये समझ सके कि साफ सफाई सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
1: तो दोस्तों, अपने VWSC का समर्थन कीजिए। ये सच में लोगों के लिए बनी समिति है।
0: क्या तुम जानते हो कि सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव गांव में सफाई बनाए रखने के लिए जरूरी है?
1: रुको रुको, सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव से तुम्हारा क्या मतलब है?
0: मैं समझाता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक निगरानी का मतलब है कि गांव के लोग खुद सफाई की जिम्मेदारी लें। गांव के लोग निगरानी समितियां बनाते हैं और ध्यान रखते हैं कि शौचालयों का सही इस्तेमाल हो, कचरा ठीक से फेंका जाए और सार्वजनिक स्थान साफ रहें।
1: अब संचालन और रखरखाव के बारे में समझते हैं। इसका मतलब है कि सफाई से जुड़ी जरूरी चीजें जैसे शौचालय, पानी सोखने वाले गड्ढे, खाद के गड्ढे और बायोगैस इकाइयां ठीक से चलती रहें और समय समय पर उसकी मरम्मत हो। VWSC इस काम में खास भूमिका निभाती है। ये समिति मरम्मत का इंतजाम, गड्ढे खाली करने की व्यवस्था और साफ सफाई के लिए जागरूकता फैलाने का काम करती है ताकि गांव हमेशा स्वच्छ बना रहे।
0: अब समझ में आया कि गांव के लोग खुद सफाई पर नजर रखते हैं, साथ ही VWSC की मदद से सफाई से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहती हैं।
1: बिल्कुल सही। जब लोग सफाई की योजना बनाने और उसे लागू करने में शामिल होते हैं तो वे इसे चलाए रखने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कई गांव में लोग बारी बारी से सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करते हैं और जल निकासी दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे पता चलता है कि जब लोग मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं तो गांव में बड़ा बदलाव आता है।
0: हाँ, लोगों को सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमा हुआ पानी को हटाना जरूरी है ताकि मच्छर ना पनपे। खास तौर पर घर के बाहर और पुराने टायरों में पानी जमा ना हो क्योंकि वहाँ मच्छर तेजी से बढ़ते हैं। नहाने या कपड़े धोने से निकला पानी भी खुली नालियों में जाने की जगह सूखने वाले गड्ढों में जाना चाहिए ताकि गंदगी और बीमारियां ना फैलें।
1: गांव में सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखने के लिए स्कूल, अस्पताल, बाजार, चाय की दुकान और मंदिर में रंग कोडेड कचरा पेटियां रखनी चाहिए। हरे रंग की डस्टबिन में गले वाला कचरा जैसे सब्जियों का छिलका डाला जाए। नीली डस्टबिन में सूखा और ना गलने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक और कागज रखा जाए। इससे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना आसान होगा।
0: लोग खुद आगे आकर स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम चला सकते हैं। लोग दीवारों पर अपना इलाका साफ रखें जैसे संदेश लिख सकते हैं। लोग कबाड़ इकट्ठा करने वाले या कूड़ा साफ करने वाले से मिलकर ये तय कर सकते हैं कि अलग अलग किया गया कचरा खासकर प्लास्टिक सही तरीके से हटाया जाए और खुले में जमा ना हो।
1: दोस्तों, याद है हमने एपिसोड 6 में ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में क्या सीखा था? जल्दी से याद कीजिए, रसोई का कचरा और गाय का गोबर बेकार नहीं होता, इन्हें खाद में बदला जा सकता है जो खेतों और पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल, अगर आपके घर या खेत के पास थोड़ी सी खाली जगह है तो आप वहाँ एक छोटा गड्ढा बना सकते हैं और उसमें रोजाना का गीला कचरा डाल सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाना, खराब फल या गोबर। इसे कभी कभी हिलाएं और मिट्टी से ढककर रखें। धीरे धीरे ये बेहतरीन खाद बन जाएगी जो खेतों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इससे कूड़ा भी कम होगा और गांव की सफाई बनी रहेगी।
1: बस ध्यान रखिए कि खाद का गड्ढा घरों और पानी के स्रोतों से दूर होना चाहिए। गाय का गोबर खाद या बायोगैस बनाने में काम आ सकता है, जिससे खेती बेहतर होती है, सेहत सुधरती है और हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। तो चलिए स्वच्छता और पर्यावरण के लिए मिलकर काम करें।
0: हाँ बिल्कुल, जब लोग खुद सफाई की पहल करते हैं तो उसका असर लंबे समय तक दिखता है।
1: सफाई सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो हमारा इलाका साफ और सुंदर बना रहेगा।
0: आपका गांव मिलकर ये कर सकता है। स्कूली बच्चों, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए इकट्ठा करें। हर महीने एक दिन सफाई अभियान चलाएं। चाय की दुकानों, मंदिरों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कूड़ेदान रखें। लोगों को रसोई और गोबर के कचरे से खाद बनाने का तरीका सिखाएं। इससे कचरा कम होगा और खेतों की पैदावार बेहतर होगी। आंगनवाड़ी या स्कूल के पास एक छोटा सा सामुदायिक बाग बनवाएं।
1: श्रोताओं, सफाई सिर्फ सरकार या पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम घर पर कैसे सफाई रखते हैं, कचरे का सही निपटान कैसे करते हैं और अपने बच्चों को स्वच्छता की आदत कैसे सिखाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कदमों से हमारा गांव साफ और सुंदर बनता है। चलिए मिलकर पहल करें और अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं।
0: दूसरों का इंतजार किए बिना खुद सफाई की पहल करें। अपनी रोजमर्रा की आदतों में सफाई को शामिल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी सेहत का रखते हैं।
1: याद रखिए कि स्वस्थ गांव ही खुशहाल गांव होता है और स्वच्छ गांव ही सबसे मजबूत गांव होता है।
0: आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने गांव को साफ रखें।
1: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी से जाने का होता है। समय श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे नंबर पे फोन करके, हमारा नंबर है 92-19-20-77-49। अब हमारे सवालों की बारी है जो आपसे पूछने हैं, जो कि हमने पहले भी पूछे हुए थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले। तो पहला सवाल है, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर की भी जरूरी है, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा है, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसे जगहें भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं? मिलते हैं अगले कार्यक्रम में और इन तीनों सवालों के जवाब आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से 92-19-20-77-49। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और अपने रेडियो साथी माता दिन भैया को दो
1: जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: नमस्कार।

ददनन से भवा ददनन से लगन लगी ती मिलवे सेल तुम्हारी भवा ददनन से लगन लगी ती मिलवे सेल तुम्हारी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहने अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज्यादा बरसात को हो गई हैगी, तो ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है, तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई को रहते हैं वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जो रथ हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए, कैसे पर्यावरण बदलत है वो और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख वेखो और सुन वेखो मिलत हैंगे। लगातार कितने दिन से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है वो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथ के

0: की मोहनी नहीं भैयेगी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकत हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रहेगा और खेती भी रहेगी और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं यानी कृषि वानिकी जो करते हैंगे, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा होगा और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रहेंगे काफ़ी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकत है वो। तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जासे पहले अपन एक नज़र डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनों का कथ है वो मौसम हमारे लाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते है वो। तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संगे हैं वर्षा, तो भी मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों, उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई किलाने फसलन को निगरानी करत रहे। साथ ही में खेत में पाए जावे बारे रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मैनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों, आबे बारे 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे बारे 3 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संगे में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे। साथ में यदि जरूरी हुए तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इमें 1 लीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रिबैंक सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवें तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुई यदि दिखें तो कार्टप हाइड्रोक्लोराइट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवें। जिन किसान भैयन की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवे। बादल छाये रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियन में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखने की संभावना बनी हैगी। ईखो नियंत्रण करवे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 EC 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है वो। इके नियंत्रण हेतु क्लोनाफॉस 25 EC दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंदगलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है गो। सो साथियों, इके लाने बचाव हेतु आपको मेटालेगजिल मैनको जेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज्यादा हरी घास ना खान देवे, नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाये रहने के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4 से 5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इनके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे। संगे में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों, आप सब जने सुन रहे थे जानकारी मौसम आधारित जानकारी और जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
0: तो साथियों, अभी आपने हमारे वर्षा जी से

मौसम आधारित जानकारी को सुना और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती, कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: मेरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद उर्वरक की मात्रा, एरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैरीगोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं। मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना,

सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना, ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफाकारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है, दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किशन भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुड़ाई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम 60 दिन, 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन, नॉर्मली तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेंगे, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये एक नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पर जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है, दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किशन भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी, पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए, तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस, तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरा के दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा 2-3 टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे, तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूं। 1 एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है, 43,560, लगभग आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6,000

बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5,000 ही बच गए। और 750 से किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है। 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया वो वाली है। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा। कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है, वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए, कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़, यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था, वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा था। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव को कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो। अल्टरनेटिव ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप एक एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है। मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है, तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो, कि जब आप डाली फूटान की अवस्था में हो तो आप फास्टर ले लो, कि ज्यादा से ज्यादा डाली फूटान का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए। और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो 1 माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो है आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है, आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसके बाद वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0-52-34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, फर्टिलाइजर वगैरह में कुछ ना करो तो सिंपल, पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले DAP डाल दो आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो, तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7,000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी आएगी। 2 वेराइटी अलग अलग करो, 2-3 टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है 4,000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1 आधा भी टन 30-40 रुपये किलो चला गया तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50 से 60 हजार प्रति एकड़ 2 से 3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल कुछ पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी इल्ली की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए,
तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45 से 60 दिनों में हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियो को आकर्षित करता है, तो वहां इल्लिया ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ पे इल्लिया ज्यादा है तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्लिया आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है। और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होगे, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसियस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मानसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6-7 हजार पौधे लगाना है, इसमें 10 हजार पौधे लगाने और देसी वाला गलगोटा कर देना है, आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8-10 हजार पौधे लगाए हैं तो आपका 4-5 टन प्रोडक्शन आ गया और 10 रुपये भी रेट आ गया तो आपको 50 रुपये मिलेंगे और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो और उसमें जमीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है जिसको रूट एक्जुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको एवॉइडेंस बोलते हैं कि मतलब कॉन्टेक्ट, जड़ से कॉन्टेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने 3 पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के 1, 2 या 3 पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको 2 वेराइटी पसंद करनी है और 3 या 4 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको, जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे 2 रुपये/किलो बेचा था और 120 रुपये/किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है 40-50-60 हजार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि भगवान ऐसा करे कि आपका 4-5 टन प्रोडक्शन आए और 50 रुपये/किलो बिके, 2-2.5 लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि खास करके पोमोग्रेनेट यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान है जो ऐसा लगाते हैं, दो तीन प्लांट लगाते हैं 2 साइड में, मतलब ये लाइन है तो यहाँ पे लगा देते, फिर उस तरफ नहीं लगाते, फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो गोलाई में, हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको, कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, तो आपको मानसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड़ जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल
या तो मे में लगाते हैं।

पपाया छोटा सा रहता है तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो, लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है, कि एक एंगल से नहीं आप मल्टीपल एंगल से देखो आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा 3-4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया, कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किशन भाइयों खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यवसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जनने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, तो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। सो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

नौ ने मड़ के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ये लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

0: मोरो सुनो डरो लिलार के बेंदा ले दे लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत, अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनते हैं अगले साथियों की गाय भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
1: भाग गए लांगुरिया।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की भग्गे लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को, आनंद लव है ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया की बात आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन भैया के संग में।

0: क्षमा क्षमना चेला गुड़िया मोदी मैया के दरबार, क्षमा क्षमना चेला गुड़िया मोदी मैया के दरबार, क्षमा क्षमना चेला गुड़िया।
1: बिल्कुल दोस्तों, मोरी मैया के दरबार क्षमा क्षम नाचे लांगुरिया। अब दोस्तों इनके गीत के बाद फिर से अपन सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को।

मोरी चुनरी भईरे भद रंग लांगुरिया लादे चुनरिया जयपुर की। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लाओ है। आप दोस्तों ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया रामकृष्ण कुशवाहा जी। सो दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो गया है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में ए बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कही ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा में पुजारी।

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे? यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना
0: कल तल

0: फिर उसके बाद
1: अरे अरे भाई अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठा, हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी, देश द्रोहियों के हम तमरू उधेड़ देंगे। ये शब्द तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा? वो बोलेगा।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने इस समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरू भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरू भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता कहाँ बात है?
0: कहाँ बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तक नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: का कह रहे ने कठिया के बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भौजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए भौजी से, वैसे तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी कि ने तुम मेरे संगे चलो।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने तो।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ये सब कहे थे हारे कि हम हारे चले थे।
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लो, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ लीजिए, आखने मुझे जरूरी काम है, वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता नहीं बता दे तो।
0: कहा कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है।
1: अरे जा कह रहा भौजी के, ऐसी क्या बात है, तो ही बता दे, हारे जा भी की क्या जरूरत है।
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सी बता दू ने, मैं कहा डाल लू ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जो दवाई ले आती, लेकिन इनसे का कोती मुझे कछु फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है वो, और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई आती हुई तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारा नाम के
0: भी। अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आऊंगा।
1: अरे आओ तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थी बात है।
0: अच्छा, मैं तुम्हारे, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, आज तुम्हारी कैसी है?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी
0: दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आप, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: तो देख भौजी, देख जा अभी भी आसो की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ भी जाने तो खेती करनी है, तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी, रासायनिक दवाई जे देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही।
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने तो ही।
0: हाँ।
1: पुनर पढ़ भी जानी है तो, और खेती भी करनी है संगे संगे। देखो अब किसानी को, गांव वालों को काम है तो सब करनी है।
0: हाँ, वो तो यह नहीं है कि लालाजू, मैं जा के रही, तुम कहा डाला दिन में देखो तुझे भटन में कैसे कीड़ा मीरा सो लग रहा है वो, और काने से लग रहा है, कहा डाला तुम इन्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुल्कन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू, मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तुम तो ऐसी बातें कर रही, कौन मेरे घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया था, तुम जाने का करा था मून, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी है, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजी, तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी, मैं तो जबकि देसी दवाई को इस्तेमाल करे थे, मैं तो बड़े वहां से आई थी, अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा हो जाए, के भी पढ़े लिखे है, अच्छी दवाई ले आती हूँ।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिसिंग में, दवाई नहीं मिला दुकान पे, मशीन से किंच दू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी छतो
1: भाई तो लिया,
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकरी रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी, तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ, उसमें तो बनाते ही हूँ, मामे कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ, जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर बनाऊ तो, और अपनी बैगन में और चाइजोन की फसल हुई मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही भौजी?
0: कहा कह रहे लालाजू, काय को मस्करी कर रही, मस्करी दिखा रही।
1: और कई तरह के घर बना दवाई बना, वो हंसी के लेगा।
0: हाँ लालाजू, मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते होंगी, रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भौजी चला ही नहीं आए थे यार, देखो कैसे
2: चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: और ना ये कहो कीड़ा लगो, कीड़ा के लाने और जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला लेते हैं, तो उनसे पूछत की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊं मैं
1: है?
0: जो अपनी चीजें हैं प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो अब तो चला ही नहीं आए तो हारे।
0: चलो देखो, अब देखो लालाजू, जो तो लगो मैं बैगन और जी अबे मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: कहा कह रहे भौजी, तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लालाजू, मैं तो यही सोच रही थी तुम्हारी उम्दा हो जाए, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी है, मैं तो इतने घरे बना था अपनी हिसाब।
1: लेकिन भौजी जी टपक जाए में मटका धरे जे का धरे चार पाँच।
0: कहा कह रहे लालाजू, टपक जा में लोटा धरे।
1: लोटा नहीं, वे मटका धरे बट तू टपक जा में।
0: हाओ लालाजी, में मटकन से मैं मटका खाद बनाता हूँ।
1: मटका खाद?
0: हाओ।
1: वह कैसी बनाता?
0: ले लालाजी, तुम्हें जो ही पता नहीं है, मैं अपनी सब देसी खाद डालता हूँ उनमें, जिससे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बने।
2: अच्छा
1: लेकिन तो मैंने जसूची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सका थे। तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तो जरूर सीख भी आऊँ दवाई बना।
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग लेने।

0: साथियों, सुना आपने बैरो भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरो भौजी ने कितने अच्छी तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छी तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरो भौजी तक सवाल सीमित नहीं है। यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
3: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा। जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
3: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
3: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, जैसे तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
4: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
4: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गए, उड़द हो गए, चना हो गए, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: ये जैविक खेती के उत्पादन।
4: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
4: अपने हिसाब से जो है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
4: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
5: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
5: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो पता है टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है आप मतलब गोबर खाद,
6: अच्छा,
5: जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
6: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
5: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, मतलब गोबर जो मान है गौ माता का ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है, फसल होने लगती है। फिर
6: अगर जैविक खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
5: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला आय,
6: आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
5: मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
6: अच्छा
5: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया टुकाई चलेगी उसकी।
6: धन्यवाद भाई साहब।
7: ब्रज किशोर कुशवाहा।
6: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
7: हमें पता नहीं है सर।
6: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
7: नहीं है जानकारी।
6: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
7: अब जी हमें पता नहीं है सर।
6: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में

0: तो आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपको कार्यक्रम का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि कार्यक्रम सुनते सुनते आपको आज के प्रश्न का उत्तर देना है।
2: हम किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली। हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जला डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
4: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड।
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
5: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। '1777 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
6: सुना तुमने?
7: क्या?
6: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
7: हैं?
6: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
7: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर

0: लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
1: ठीक कहते हो भाई, अभी देखा नहीं जब पीर अली की मजार पर गए थे, तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
0: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
2: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
1: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे ले। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करें?
3: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
4: चाहिए कि जिसके बारे में
1: जान। हुजूर, अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
5: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
0: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
5: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
5: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिलें।
1: जी हुजूर।
5: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
6: चलो चलो चलो आरा चलो चलो चलो चलो।
7: 26 जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी, चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
5: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं, इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है, शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
6: अमर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
7: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा, सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
8: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों

के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है, उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं।

कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की

0: 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
2: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
3: पूरी करे।
2: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
4: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
1: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
5: ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अदरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई।

0: दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
1: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
0: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
2: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये उपहार।
0: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जाह्नवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
3: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
4: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
5: Yes,
3: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह।
1: ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का दूसरा कार्यक्रम,
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
3: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूं।
2: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
3: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह दुनी बारह।
4: नहीं आ रहे।
3: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। 6 3 18
5: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
6: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
3: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
6: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
3: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
6: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
3: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
6: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
5: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
2: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
3: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
2: करता है पर पहाड़ा।
3: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
2: फिर पहाड़ा कब?
3: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह 1 2 घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
2: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
3: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूंगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
2: पक्का?
3: पक्का।
2: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
3: क्यों करूंगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
2: हाँ सच? तो फिर मैं खेलने जाऊं?
3: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
5: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
0: खत्म हुआ झगड़ा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आशा है कि आज का प्रसारण आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
1: इसी प्रकार सुनते रहें उमंग,
0: और मन में आने दीजिए नई तरंग,
1: और अपने मित्रों में बांटते रहें
0: नए मन की तरंग के साथ मन की उमंग।
1: अब अजीत और विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

आप सभी का स्वागत है हेल्थ ऑन एयर के पॉडकास्ट पर। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण का महत्व। प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आज का कॉलम लिया गया है सुमेंद्र बग्ची के आर्टिकल से।

सुमेंद्र बख्शी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और कोविड वैक्सीन स्पेशलिस्ट हैं। आज इस पॉडकास्ट के द्वारा हम जानेंगे कि टीकाकरण क्यों महिलाओं के लिए गर्भावस्था में इतना महत्वपूर्ण होता है। ये सच है कि बच्चों के टीकाकरण की तुलना में गर्भवती महिलाओं में नियमित टीकाकरण का दर हमेशा कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी टीडीएपी वैक्सीन का कवरेज 56.6% है। आज भी कई चिकित्सक और समुदाय के सदस्य गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण को लेकर झिझकते हैं, क्योंकि इससे गर्भावस्था के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिशु पर संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण गर्भावस्था के दौरान कई दवाओं का सेवन मना होता है। हालांकि जहां तक टीकाकरण का सवाल है, दुनिया भर में सुरक्षा मुद्दों का सख्ती से पालन किया जाता है, और अब हमारे पास स्पष्ट डेटा समर्थित समझ है कि क्या सुरक्षित है और क्या असुरक्षित है। मातृ टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? मातृ टीकाकरण के दो अलग अलग फायदे हैं। सबसे पहले, यह गर्भावस्था की अवधि के दौरान मां और भ्रूण दोनों को गंभीर संक्रमण से बचाता है, और दूसरा, यह आईजीजी और आईजीए एंटीबॉडीज के प्लेसेंटल ट्रांसफर द्वारा जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को संक्रमण से बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए यानी आईजीए, यह श्वसन पथ और पाचन तंत्र के स्तर के साथ साथ लार, आंसू और स्तन के दूध में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी यानी आईजीजी, यह सबसे आम एंटीबॉडी है। यह रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में होता है। यह बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से बचाता है। गर्भावस्था के दौरान कौन से टीके लगवाना वर्जित है? जीवित क्षीण वायरस टीकों यानी लाइव अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन्स से गर्भावस्था के परिणामों पर संभावित प्रतिकूल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध लाइव के उदाहरण क्षीण टीके वायरल संक्रमणों के खिलाफ खसरा, कटमाला, रुबेला, चेचक, पीला बुखार, इन्फ्लुएंजा और मौखिक पोलियो वैक्सीन शामिल है। जीवित क्षीण जीवाणुरोधी टीकों में तपेदिक, बीसीजी और मौखिक टाइफाइड टीका शामिल है। गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन का भरोसा कैसे बढ़ाएं? महिलाएं अपनी व्यापक घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अक्सर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपयोग करती हैं और अक्सर अपनी भलाई की उपेक्षा करती हैं। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के लाभों के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रमुख निर्धारक है। टीकाकरण के महत्व के बारे में सफल वकालत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की प्रमुख भूमिका है। गर्भवती महिलाओं के मन में सकारात्मक प्रभाव के लिए प्राथमिक देखभाल चिकित्सा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात टेटनेस से सुरक्षा के लिए टेटनेस टॉक्साइड वैक्सीन या टीडीएपी की कितनी खुराक लेनी चाहिए? भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आमतौर पर 3 टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। इन टीकों में टेटनेस टॉक्साइड, टीडीएपी और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शामिल है। टेटनेस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जिससे माँ और नवजात शिशु दोनों को खतरा होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के कारण यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इलाज न किए जाने पर घातक जोखिम पैदा कर सकता है। नवजात टेटनेस ठीक न हुए नाभि स्तंभ के संक्रमण के कारण होता है। वैक्सीनेशन ही इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका है। टेटनेस टॉक्साइड के टीके गर्भावस्था के दौरान भी सुरक्षित हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान 2 खुराक की सलाह दी जाती है, जिसमें 3 साल के भीतर अगली गर्भधारण के लिए बूस्टर खुराक होती है। टीटी टीकाकरण मातृ एवं नवजात सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे समय से पहले होने वाले बच्चे की जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलने पर TT1 यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए। TT2 TT1 के 4

सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए। यदि मां ने पिछली गर्भावस्था में 3 साल के भीतर TT2 की खुराक ली है तो भारत के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार टीटी की एक बूस्टर खुराक की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि स्तनपान अवधि के दौरान कौन से टीकों की सिफारिश की जानी चाहिए। एमपॉक्स, चेचक और पीले बुखार के टीकों को छोड़कर अन्य सभी टीके जैसे निष्क्रिय, जिनमें की एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस ए, HPV, इन्फ्लुएंजा, JE, IPV और रेबीज आते हैं। इसी के साथ लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण वायरस, जिनमें इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स और थायराइड आता है, ये सभी लिए जा सकते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण, जिनमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनः संयोजक, जिनमें आते हैं हेपेटाइटिस बी और मेनिंगोकॉकल। कॉन्जुगेट यानी संयुग्म, जिनमें आते हैं HIV, PCV, मेनिंगोकॉकल। पॉलीसैकेराइड, जिनमें आते हैं PVC और टाइफाइड। ये सारे वैक्सीन स्तनपान की अवधि के दौरान सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि बाल टीकाकरण दरों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अभी भी बड़े पैमाने पर वंचित हैं। टीकों पर विश्वास पैदा करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामान्य चिकित्सकों, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा बेहतर संचार रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। विश्वास निर्माण का यह प्रयास न केवल बच्चों और माँ की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टीकाकरण के समग्र रूप में समाज को मिलाने वाले व्यापक स्वास्थ्य लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।

0: से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन को आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम खेत खलियान में बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे किसान साथी उनको बता दें, वो चाहते हैं कि आज के हमारे जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम में आज बतकाव करवे जा रहे हैं कि हमारे किसान साथी कैसे हैं, जैसे में किसान साथी टमाटर की नर्सरी कौन तरीके से कर सकते हैं, अब ऐसे खेत की तैयारी कर ले और कौन तरीके से हमारे किसान साथी कौन सा बीज

लगा सकत हैं, बा विषय पर बतकाव करेंगी। आपको बता दें वो चाहते हैं कि खेत कल्याण कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बतकाव को लेकर आते हैं और हमारे किसान साथियों को वो छोटी सी छोटी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे किसान साथियों की आय को दुगनी करवे के लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैगी। खासतौर पर देखो जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अब खंड खंड वर्षा होती हैगी और ऐसे में किसान साथी हमारे बहुत सारे किसान साथी जो खेती पर आश्रित रत हैंगे, तो ऐसे में हमारे किसान साथी का कर रहेंगे। तो खेती के संगे संगे चूंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जा वक्त बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हैगी और हमारे किसान साथी फ्री बैठे हुई है, तो अब किसान साथियों को अगली फसल की तैयारी कर लें चजित और अपनी आय तबई दुगनी हुए जब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि खेत खाली हैंगे अपन नर्सरी भी कर सकत हैंगे और संगे संगे हम अपन फलदार वृक्ष है वे भी अपन लगा सकत हैंगे अपने और नर्सरी भी लगा सकते हैं, फूलन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे विकल्प है खेती किसानी में जो हमारे किसान साथी करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैंगे। तो आज हमारे संगे विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सिंह जुड़ेंगे और वो बतकाव करेंगे और बताएंगे कि जब गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, कौन सा बीज और का का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मट्टी को बनाना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पूरी जानकारी जो कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे अपन। लेकिन जैसे पहले अपन कैसे मौसम आधारित अपन खेती करते हैंगे और मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं रहते कि कब बरसात हो जाए, कब जहां धूप न करे, ऐसे में हमारे किसान साथी आप का करवे तो मौसम आधारित खेती करवे कार्यक्रम को आगे बढ़ात भय अपन एक 900 लोकगीत सुन ले रहे हैं और जाके बाद हम अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुवा चले और उनसे जाना है कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से टमाटर की नर्सरी खेती कर सकते हैं, कौन वैरायटी अपने खेतन में लगा सकते हैं। तो आओ सुनते हैं जो 900 लोकगीत को।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अबे अपन ने जो नौ सौ लोकगीत को सुनो, लोकगीत को आनंद लाओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो भाई अपने विषय विशेषक के पास आपको लुआ चला थेंगे और उनसे जाना थे कि टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कौन तरीके से लगा सकते हैं, का सावधानी उनको बरतने चजित आओ सुनते हैं जा चर्चा को। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से, अब चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो टमाटर की बहुत ज्यादा महंगाई भी हैगी, टमाटर की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन बातन को उनको ध्यान में रखें जगजीत।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है, आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है, हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है, उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं कि आप देखें, पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है।

तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम

ये बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रोन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है, तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं। और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डाइथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्के से छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डाइथिन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डाइथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक
कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये।

0: 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों, अब अपन ने डॉक्टर साहब से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुनो है और अपन ने जानो कि कौन तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं, टमाटर की के नर्सरी लगा सकते हैं और संगे संगे कौन कौन सी वेरायटी हो सकते हैं। उनने पंजाब की कछु वेरायटी बताई है, कछु वाराणसी की वेरायटी बताई है जो बहुत अच्छे आपको उत्पादन देंगे। तो ऐसे ही वेरायटी अपन हो समझने हैं, सोचने हैं, तब ही अपने खेतन में लगाने हैं। अब तैयारी करवो बहुत ज्यादा आवश्यकता है और संगे संगे अपने खेत जो खाली पड़े हैंगे उनकी जुताई भी हमारे किसान साथी कर सकते हैंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें चाहिए उनको, कैसे आने वाला समय जो है बहुत महंगाई को हो जाएगा। कैसे अबे अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपन हो लगत लग जाएगी और मुनाफा अगर देखो जाए यानी उत्पादन देखी जाए तो बहुत कम हैंगे। अब कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही हैंगी, तो उनको भी अपन को लाभ लेने, संगे संगे बीजन को चेंज जो अपन करते हैं तो कृषि विभाग की ओर से जो कृषि विस्तार अधिकारी रहेंगे उनके पास जाके अपन को संपर्क करने, उनसे पूछने हैं कौन तरीके के कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन तरीके से अपन को तैयारी करनी चाहिए। और संगे संगे एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से अपन को कि हमारे किसान साथी अभी चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो अपनी मिट्टी को परीक्षण अवश्य करा ले, कैसे कौन से तत्व की कमी हैगी जो पता चल जाएगा, अगर जो पता चल जाए तो अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपन जाके भरपाई भी अपन कर सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है। अब जाके तत्व को पूर्ति करने के लाने कौन सी दवा अपन को डालना चाहिए, कौन सी अपना हो बीज लगाना चाहिए, तो जैसे सारी जानकारी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं। अपने पास फैसिलिटी हैगी, अगर अधिक जानकारी आपको पाने हैं तो केबी की चले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र, उतर जाके हम बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी अपन को उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे भी पूछो, वैज्ञानिक रहते हैं उनसे भी सलाह लो, तभी अपन आने वाले समय में अपन अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। आप साथी रहो, हम समय होते जा कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जावे को, तो कार्यक्रम आपको कैसो लगो हमें जरूर बताओ। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जा कार्यक्रम खेत खलियान से जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लाने नमस्कार, राम राम।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन किला ने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को, और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। सो आओ दोस्तों, देर न करत हुए कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे, और कार्यक्रम में सुनते हैं प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आओ सुनते हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी। दर्शन

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन लगी नजरिया मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वार की बरी।

खोला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी, खोला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल, पान बतासा ध्वजा नारियल से भर गई चौतरिया, भैया खोल दो मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया। दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से

देखो दोस्तों, जो कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों के गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कुकू लगाए। देखो कितना अच्छो जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन खो लंगरवा कायर उठो। देखो कितनों बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को।

हो जा दयाल कृपाल महामाई अब की बीर। देखो दोस्तों कितनों बढ़िया जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, ये देवी गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया गोविंदास कुशवाहा जी। सो आओ दोस्तों गोविंदास भैया जी के गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, मैया भक्त खड़े पुकारे दूर में हो माँ। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो भजन अपन सब जन ने सुनो, भजन को आनंद लो है। और दोस्तों ई भजन को जो गा रहे थे वे गा रहे थे किशोरी लाल कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।